जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अरसूम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश करते हुए यहां से हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन के आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुबालो शिव का नाम हरि हरन की आवाज में सुंदर सा भजन आज रविवार की प्रोग्राम में बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है ठाकुर भीम सिंह की आवाज में, जरूर आप सुनते ही रहना।

रहीम सिंह के आवास में बस पीस की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा और रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एक प्रोग्राम जो सालों से रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है, प्रोग्राम भजन यात्रा। अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुनवालु की सेवा में रेडियो SBS की सरिये सुनवालु स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302266611। चले प्रोग्राम में अनूप जलोता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। अनूप जलोता जी की आवाज में ये सुंदर भजन आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

सुनिए सुंदर सा भजन बसुर भावे पीस के गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक भजन पेश किया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी की आवाज में।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं दुनिया की कोने कोने में हॉलैंड देश के अंदर हॉलैंड देश के बाहर। तो चले प्रोग्राम में अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है ये सुंदर सा भजन आप सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भजन यात्रा प्रोग्राम रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सोमवार से लेकर के और शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक और हर शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक भजन यात्रा प्रोग्राम बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम एक चालीसा की ओर हम आपको ले चलते हैं और वो भी सूर्य चालीसा बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आज रविवार का दिन है तो सुंदर सा सूर्य चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है श्री सूर्य चालीसा अनुराधा पोटवल जी की आवाज में।

अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में सूर्य चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ भी आज रविवार का भजन यात्रा का प्रोग्राम खत्म समाप्त किया जाएगी। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह।

11 बजे तक, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक कुछ मिले जुले नखमे पेश होगा, कुछ नए फिल्मी गाने 12 बजे से इस प्रोग्राम में फरमाइश से पेश किया जाएगी आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। ठीक 12 बजे से इस प्रोग्राम में फरमाइश पेश होगा और 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश होगा ग्लेन रामबाली के जरिए। 6 बजे से आरजे अंशुल के जरिए प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना रात्रि में तकरीबन 9 बजे तक। तो मतलब होते हैं कि यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और वो भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। पहला गाना पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं आज की प्रोग्राम का पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम का पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

0: लहरा के जल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला
1: द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा। फिल्म का नाम इज्जत, धर्मेंद्र का

कैनबस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की प्रोग्राम में गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, लता मंगेशकर की आवाज में।

गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में है। चलिए प्रोग्राम में शमी कपूर का एक एक्टिंग किया हुआ गाना की ओर, एड फिल्म दिल देके देखो, मोहम्मद रफी प्रोग्राम में है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम देखे देखो, उषा खन्ना का संगीत पर यह गाना पेश किया जा रहा है।

kunt u wel een studio telefoonnummer 030-262-6611. चले प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

राज कपूर एक्टिंग किया हुआ गाना है, फिल्म दीवाना हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत और शंकर जय किशन का मधुर संगीत पर यह गाना पेश की गई है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना। तो चले प्रोग्राम में आपकी बार फिल्म तेरे मेरे सपने की ओर। The Man with Every Queen Voice, किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

1971 का फिल्म तेरे मेरे सपने। किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। देवानंद और खास तौर पर मुमताज का एक्टिंग किया हुआ गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है और खास तौर पर एस डी बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन का संगीत पर ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। एक बार फिर से किशोर और लता, अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म दो चोर।

दो चोर उसी फिल्म का गीत पेश की गए किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में, एक्टिंग सॉन्ग बाय धर्मेंद्र एंड तनुजा, म्यूजिक बाय एडे बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन का संगीत पर ये गाना पेश की गए, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। फिल्म दो चोर उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, तो चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर, वादा कल्ले साजना द मूवी हार्ट की सफाई। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में।

uit de film Haki Safai. 1974, film hem. Mohammed Rafiolata Jukia Vans Mebhiadni Sunan. Acting song by Vinod Khanna. The late Vinod Khanna Aude Simi. Ye khas gana ko acting kiya hai. Kalyan ji Anand ji ka sangeet par abhi aapne suna. Aur khas toh par Gulshan Bawra ka likha hua geet bas program mein pesh ki gaye. To chale ab ki baar Amitabh Bachchan aur Rekha ka acting kiya hua gana ki aur. मिस्टर नटवरलाल फिल्म का नाम है. किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर प्रोग्राम में परदेसिया.

रजीश रोशन का संगीत पर और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना फिल्म मिस्टर नटवालाल, उसी फिल्म का गाना पेश की गई किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में। और जिस तरह से मैंने आपको खबर किया अमिताभ बच्चन और खासतौर पर रेखा का एक्टिंग किया हुआ गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तो चले अगली बार फिल्म नया दौर की ओर, मोहम्मद रफी एनाशिया।

गए हैं दिलीप कुमार और विजंती माला का एक्टिंग किया हुआ गाना मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। अभी आपने सुना फिल्म नया दौर का गाना 1957 1957 का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश और लता मंगेशकर आपकी बार प्रोग्राम में होगा। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम ओपरा हाउस 1961 का फिल्म है। देखो मौसम क्या बाहर है गाना का बोल।

जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था ओपरा हाउस। 1961-1963 का खास फिल्म का गीत पेश की गई। चित्र गुप्ता का संगीत पर अभी आपने सुना ये खास गाना, और गाना को एक्टिंग करने वाले थे अजीत और सरोया देवी। सरोया देवी इस गाना को एक्टिंग किया है, और इसी तरह से आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म ओपरा हाउस का गीत पेश की गई। एक और काफी पुरानी फिल्म का गीत, फिल्म का नाम पैगाम, मोहम्मद रफी और आशा भोसले प्रोग्राम में। जवानी में अकेलेपन की

से रामचंद्र का संगीत पर दिलीप कुमार और विजंती माला का एक्टिंग किया हुआ गाना फिल्म पैगाम का गीत पेश किए गए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में 1959 का खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना। तो चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है पल पल दिल के पास। आई द फिल्म ब्लैक।

SBS का ऐप पर है और ऐप किया है, गुड मॉर्निंग कहा है, खुद मूर्ख कहा है, गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ भी हमें स्वागत किया है। आप सभी को भी वेलकम, खुद मूर्ख रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। हो जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, ठीक 12 बजे से प्रोग्राम में फरमाइश पेश होगा। किसके लिए फरमाइश होगा, ये तो सरप्राइज ही सरप्राइज होगा। तो 12 बजे से बस प्रोग्राम में फरमाइश जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। रेडियो SBS के जरिए जो पेश किया जाएगी, और मत भूलना, 3 सप्ताह बैठक गाना प्रोग्राम नहीं पेश हुआ है, लेकिन आज से बैठक गाना प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। बैठक गाना मास्टर ग्लेन रामबाली के जरिए वही हंगामा प्रोग्राम बस पेश किया जाएगी। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम, मैं हूँ आपका खिदमत गुजार रबीन। कल बैंस्कोप में नाटक थे, काफी सुनने वालों से बस मुलाकात हुआ। हाँ, बहुत सी सुनने वालों जो हमारा रेडियो SBS का ऐप पर है, बस वहां पर मुलाकात हुआ है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, तो चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना, शेरों की बादशाह और संगीत का फरिश्ता, मरहूम मोहम्मद रफी।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी टारगेट नंबर पर हमेशा भी आप रेडियो एसबीएस का एप

पर ऐप भी आप कर सकते हैं। शेड्यूल ट्रैक से ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है रेडियो SBS का। और इन दिनों अपना घरों में मौतकार में हमारा प्रोग्राम डीएबी प्लस द्वारा भी आप सुन सकते हैं, अच्छी आवाज में, अच्छी साउंड में, पूरा की पूरा दूर दूर शहरों में, मिड नीदरलैंड में ये प्रोग्राम सुनाई देता है डीएबी प्लस द्वारा। और खासतौर पर प्रोविंसी साउथ होलैंड में काफी शहरों में, प्रोविंसी साउथ होलैंड में ये प्रोग्राम रोटरडम, क्रिम्प, कपेल, डेल्फ, बारंद्रेख, रेडरकेरक, और खासतौर पर सूतमेर, नौ दौरा और ऐसे बहुत से शहरों है प्रोविंसी साउथ होलैंड में जहां पर हमारा प्रोग्राम भी सुनाई देता है। तो चले प्रोग्राम में एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर। मोहम्मद रफी एक बार

0: मोहम्मद रफी ने खूब फरमाए, दुनिया में आए तो सिर्फ तेरी खातिर आए,
1: आया
0: दुनिया में आए तो सिर्फ तेरी खातिर आए, इसलिए कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी तो शराबी ये दिल हो गए। मोहम्मद रफी।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई है, द मूवी द ट्रेन। 1987 का खास फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। बहुत सी सुनने वालों है जो अपना अपना रिएक्शंस देते हैं रेडियो SBS का एप के जरिए। शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी हमारा और हमारा साथ देते हैं। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनवालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि कहां कहां पर हमारा प्रोग्राम DAB प्लस द्वारा सुनाई देता है। फरमाइशों के बारे में इसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका डाक होरोस्कोप भी होता है, और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर, साथ में होगा लता मंगेशकर।

का मजा सफर में है। जिंदगी वो क्या ना प्यार जिसमें हो, साथ अगर हो साथी दिल का मजा सफर में है।

रेडियो SBS की जरिए मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनवालू, जिस तरह से मैंने आपको खबर किया कि अभी 12 बजे से बस प्रोग्राम में फरमाइश से पेश किया जाएगी, और किसके लिए फरमाइश पेश होगा? सरप्राइज ही सरप्राइज होगा। अभी 12 बजे से जरूर सुनते ही रहना। 2:04 हेलो फेलो स्टूडियो टाइट हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं किशोर कुमार प्रोग्राम में।

minuten over half elf, studiotijd. Als je Ravi Varga din hai, 10 tarikh mei ka program pesh kiya ja raha hai. Sabhi sunne walon ko shubh subah, shubh din, welkom. Aur Radio SBS ka program zarur sunte hi rehna. पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है. चले प्रोग्राम में मौसम आज का बदली बदली सा मौसम, बादल छाया हुआ मौसम है और खबर मिला है कहीं कहीं रिमझिम बारिश हो रहा है. तो चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर, सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी एंड लता.

तलत महमूद द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई डार्क फिल्म गाना। तकरीबन 11 बजे तक पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। सुनने वालों एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है ठीक 12 बजे से बस प्रोग्राम में फरमाइश से पेश किया जाएगी। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। इस रेडियो स्टेशन के जरिए खूबसूरत नगमे हमेशा आपके लिए पेश किया जा रहा है और इसलिए भी बहुत सी सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं। उन लोग को मालूम है कि इस रेडियो पर तार द्वारा सुनने वालों से हम घंटे बातें नहीं करते हैं लेकिन गाने पेश करते हैं। जैसे कि ये गाना है, एक बार फिर से तलत महमूद और लता प्रोग्राम में।

महमूद और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे अपनी बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम।

आई मिलन की बेला फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में खास गाना अभी आपने सुना। काफी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं सभी, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं जरूर सुनते ही रहना। स्लो स्किल से खासतौर पर सेउस फ्लांडरन से खासतौर पर ईसाक और शरीन हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं स्लाइस किल में। बस प्रोग्राम सुनते रहना, शुभ दिन पेश किया जा रहा है। लोग नेचुरली लॉस्टर इन स्लाइस किल। और खासतौर पर यूट्रेख्ट शहर के अंदर में राजन गिरधारी है, हाँ यूट्रेख्ट लाइट्स राइन गिरधारी स्त्रात से राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। सभी सुनने वालों जो ऐप पर है, बहुत सी सुनने वालों हम देख रहे हैं ऐप कर रहे हैं, अगर आप प्रोग्राम सुनते हैं तो जरूर ऐप द्वारा हमें खबर कीजिए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी है, पुरानी फिल्म का गीत भी शो का प्रोग्राम में किशोर और लता जी की आवाज में अब की बार किशोर और लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, रहे ना रहे चाहे हम और तुम। स्पेशल आप सभी सुनने वालों के लिए ये गाना पेश किया जा रहा है, एक गाना जो हमारी बहुत सी सुनने वालों है पसंद करते हैं, तो उन सभी के लिए ये गाना हमारी तरफ से, रहे ना रहे चाहे हम और तुम। लाइफ अनहेलमो यूनिवर्स, जितनी बार हम सुने जी नहीं भरता है।

इसी तरह से अभी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू जी के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा। चलिए अब की बार फिल्म धड़कन की ओर एक बार फिर से होगा। उदित नारायण, अलका याग्निक एंड कुमार सानू प्रोग्राम में।

film Dhadkan. उदित नारायण और अलका साथ ही साथ कुमार सानू जे की आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम धड़कन, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2-62-66-11।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में प्रेम अगन फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई।

के आवास में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

भरपाई से जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, बस अपना फरमाई से जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से जन्मदिन रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से लाख लाख बधाई हो, शुभकामनाएं हो। रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में 5 and 5 टक्स्त फरियारदाख यानी कि जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर यारख शांता रघु लालू खुद अपने लिए 5 and 5 टक्स्त फरियारदाख की खुशी के मौके पर अपना मन चाहत भजन बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में फाइव टक्स्ट फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर यारख शांता रघु लालू खुद अपने लिए ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज एतवार रविवार 3 तारीख में फाइव टक्स्ट फरियारदाग है, जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर पूरा परिवार बड़ी ही खुश होकर यानी कि प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी पत्नी के लिए दो बेटा विशाल और विनेश रघु और एक बेटी वीरागनी छेदी रघु के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी माँ, दो पतो शोभा रघु सीताराम और जया रघु जोगी और एक दामाद रवेश छेदी के तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास के लिए, वियान और विषय रघु के तरफ से अपने प्यारी प्यारी आजी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना को फरमाइश।

रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में 5/5 टक्स्ट फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी पत्नी के लिए दो बेटा विशाल और विनेश रघु और एक बेटी वीरागनी छेदी रघु के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी माता श्री के लिए दो पतो शोभा रघु सीताराम और जया रघु जोगी और एक दामाद रवीश छेदी के तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास के लिए वियान और विषय रघु के तरफ से प्यारी प्यारी आजी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। आज रविवार 3 तारीख मई रोटरडम शहर की रहने वाली यारह शांता रघु लालू की 5/5 टक्स्ट फरियारदाग है। इसी खुशी के मौके पर बड़ी ही खुश होकर प्यारा प्यारा पति राजन रघु अपने प्यारी प्यारी पत्नी की 5/5 टक्स्ट फरियारदाग की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना दिलजा से प्यार और मोहब्बत के साथ ये गाना को फरमाइश कर रहे हैं।

आज रविवार 3 तारीख मई रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की 55वां फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से अपने प्यारी प्यारी पत्नी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई, शुभकामना और दिल जान से प्यार मोहब्बत विद लव, ये गाना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज 8वां रविवार 3 तारीख में 55वां फरियारदाग है। इसी खुशी के मौके पर नीदरलैंड और सूरीनाम देश से प्यारी प्यारी माताश्री चित्रावती जियालाल की तरफ से अपने प्यारी प्यारी बेटी के लिए, दो भाई और दो बहन की तरफ से अपने बहन, एक भौजी की तरफ से अपने ननद, दो छोटकू की तरफ से बरकी के लिए, 5 लड़कन की तरफ से मौसी, 2 लड़कन की तरफ से फुआ, 1 दामाद की तरफ से मौसिया सास के लिए और 2 लड़कन की तरफ से प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई पेश कर रहे हैं कि बार बार ये दिन आए।

रोटरडम शहर की रहने वाली यारह शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में 55 जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर नीदरलैंड और सूरीनाम देश से प्यारी प्यारी माता श्री चित्रावती जियालाल की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी बेटी के लिए, दो भाई और दो बहन की तरफ से अपने बहन, एक भौजी की तरफ से अपने ननद, दो छोटकू की तरफ से बड़की के लिए, 5 लड़कन की तरफ से मौसी, 2 लड़कन की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी फुआ के लिए, 1 दामाद की तरफ से मौसिया सास के लिए और 2 लड़कन की तरफ से प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। यारह शांता रघु लालू रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से जन्मदिन लाख लाख बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आसरो मीठे परिवार की तरफ से जो सरप्राइज आपके लिए पेश किया जा रहा है सुनकर और सुनकर काफी पसंद आते हैं। रोटरडम शहर की रहने वाली यारह शांता रघु लालू की आज 8 रविवार 3 तारीख में 55 है। इसी खुशी के मौके पर 2 लड़कन वियान और विषय रघु के तरफ से अपने प्यारी प्यारी लीफ लीफ सौरख साम आजी के लिए ये गाना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे हैं।

आज रविवार 3 तारीख मई रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की 55 तख्त फरियादाख जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर दो प्यारा प्यारा पोता वियान और विषय रघु के तरफ से अपने प्यारी प्यारी लीफ लीफ सौरख शाम आजी के लिए लाख लाख बधाई शुभकामना और ढेर सा प्यार दुलार देते हुए ये गाना को फरमाइश कर रहे थे। रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज एतवार रविवार 3 तारीख मई 55 तख्त फरियादाख जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से अपने प्यारी प्यारी पत्नी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और दिल की गहराइया से प्यार मोहब्बत पेश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली यारखा शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में 5/5 टक्स्ट फरियादा है। इसी खुशी के मौके पर बड़ी ही खुश होकर प्यारा प्यारा पति राजन रघु अपने प्यारी प्यारी पत्नी के लिए जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और दिल जान से प्यार मोहब्बत बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज एतवार रविवार 3 तारीख में 5/5 टक्स्ट फरियादाख जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर इसी खास उपलक्ष्य पर नीदरलैंड और सूरीनाम देश से सास और ससुर कमलावती हैंक मंसाराम और फ्रेट या कहिए नीदरलैंड और सूरीनाम देश से सास और ससुर कमलावती हुक बंसाराम और फ्रेट हुक के तरफ से अपने प्यारी प्यारी पतों के लिए 3 देवर के तरफ से अपने भौजी, 1 छुटकी के तरफ से अपने बरकी और 4 लड़कन के तरफ से बरकी माई की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना को फरमाइश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में फाइव टक्स्ट फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर नीदरलैंड और सूरीनाम देश से सास और ससुर कमलावती हुक मंसाराम और फ्रेट हुक के तरफ से अपने प्यारी प्यारी पतों के लिए, तीन देवर के तरफ से अपने भाऊजी, एक छुटकी के तरफ से अपने बरकी और चार लड़कन के तरफ से बरकी माई की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना हैप्पी बर्थडे बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और भी फरमाइश बस प्रोग्राम में सुनते ही रहना। आज रविवार 3 तारीख में रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की फाइव टक्स्ट फरियारदाग है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से अपने प्यारी प्यारी पत्नी शांता रघु लालू के लिए फाइव टक्स्ट फरियारदाग की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और दिल जान से प्यार मोहब्बत पेश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में 5/5 तख्तफर यारदा है। खुशी के मौके पर दो बेटा और एक बेटी विशाल विनेश और वीरागनी रघु के तरफ से प्यारी प्यारी माताश्री के जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और ढेर सा प्यार दुलार देते हुए ये गाना को फरमाइश कर रहे थे। रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज रविवार इतवार 3 तारीख मई 5/5 तख्तफर यारदा जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर दो प्यारी प्यारी पतुआ शोभा रघु सीताराम और जया रघु जोगी और एक दामाद रवीश छेदी की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास की जन्मदिन की खुशी के मौके पर तो शोभा रघु सीताराम और जया रघु जोगी और एक दामाद रवीश छेदी की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना पेश कर रहे हैं।

रविवार 3 तारीख मई और रोटरडाम शहर की रहने वाली यारग शांता रघु लालू की 55वीं फरियादा है। इसी खुशी के मौके पर दो प्यारी प्यारी पतो शोभा रघु सीताराम और जया रघु जोगी और एक दामाद रवेश छेड़ी की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सासू जी की 55वीं फरियादा की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना पेश कर रहे थे। आज रविवार 3 तारीख मई और रोटरडाम शहर की रहने वाली यारग शांता

रघुवर लालू की 55वें verjaardag है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से प्यारी प्यारी पत्नी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई, शुभकामना और दिल जान से प्यार मोहब्बत पेश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली यारह शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में 5/5 तख्त फरियारदाग जन्मदिन है। खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी पत्नी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और दिल जान से प्यार मोहब्बत बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज एतवार रविवार 3 तारीख मई 5/5 तख्त फरियारदाग है। एक बार फिर से प्यारा प्यारा पति राजन रघु अपने प्यारी प्यारी पत्नी की 5/5 तख्त फरियारदाग की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और दिल जहां से प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना को फरमाइश कर रहे हैं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो

रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में 55 तख्तोफर यारदाख है। खुशी के मौके पर बड़ी ही खुश होकर प्यारा प्यारा पति राजन रघु अपनी प्यारी प्यारी पत्नी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और दिल जान से प्यार मोहब्बत बसपुरु काम में फरमाइश कर रहे थे। रोटरडम शहर की यह रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख मई फंडाग जोंदाग 3 मई 55 सफर यारदाग है। इसी खुशी के मौके पर मिक जालिम सिंह बहादुर सिंह और राजेश जालिम सिंह के तरफ से अपने प्यारी प्यारी समधिनिया की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस पेश कर रहे हैं।

आज रविवार 3 तारीख में रोटरडम शहर की रहने वाली यारखा शांता रघु लालू की 55वां फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर मिका जालिम सिंह, बहादुर सिंह और राजेश जालिम सिंह के तरफ से अपने प्यारी प्यारी समधिनिया की 55वां फरियारदाग की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से यारख शांता रघु लालू 55वां फरियारदाग लाख लाख बधाई हो। रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज 8वां रविवार 3 तारीख में 55वां फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से प्यारी प्यारी पत्नी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और दिल की गहराइया से प्यार मोहब्बत पेश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रगोलालू की आज रविवार 3 तारीख मई 55 तख्तोफर यारदाह जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा पति राजन रघु अपनी प्यारी प्यारी पत्नी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख मई फंदाख सोंदाग 3 मई 55 तख्तोफरियारदाग है। इसी खुशी के मौके पर दो बेटा और एक बेटी विशाल विनेश और वीरागनी रघु की तरफ से अपने प्यारी प्यारी माँ अपनी लीफ लीफ मामा के लिए और साथ ही साथ कहते हैं सुस्तात altijd en altijd voor ons klaar. तो दो बेटा और एक बेटी विशाल विनेश और वीरागनी रघु प्यारी प्यारी लीफ लीफ मामा के लिए ये गाना लाख लाख बधाई और शुभकामनाएं के साथ पेश कर रहे हैं हम।

Rita Raghu Lalugia, रविवार 3 तारीख में 55वां verjaardag जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर दो बेटा और एक बेटी है, विशाल विनेश और विराग ने रघु की तरफ से अपने प्यारी प्यारी लिफा लिफा मामा के लिए लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। आज रविवार 3 तारीख में रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की 55वां फरियारदा है, जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर गीता खुशियाल और सुनील गजाधर के तरफ से प्यारी प्यारी समधिनिया की 55वां फरियारदा की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई पेश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में 55वां फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर गीता खुशियाल और सुनील गजाधर के तरफ से अपने प्यारी प्यारी समधिनिया की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई और शुभकामना बस पेश कर रहे थे। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और भी फरमाइश बस प्रोग्राम में सुनते ही रहना। आज रविवार 3 तारीख में रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की 55वां फरियारदाग है। इसी खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी पत्नी यारख शांता रघु लालू अपने प्यारा प्यारा पति राजन रघु के लिए दिल जान से प्यार और मोहब्बत के साथ विद लव ये गाना अपनी बार फरमाइश कर रहे हैं कि मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो तो ऐसा हो। प्यारी प्यारी पत्नी यारख शांता रघु लालू की तरफ से अपने प्यारा प्यारा पति राजन रघु के लिए दिल की गहराइया से प्यार मोहब्बत विद लव।

वक्त हम लेते हुए तुरंत फरवाई से की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज रविवार 3 तारीख में रोथडाम शहर की रहने वाली यारख शांता रघुबू लालू की 55th फरियादाग है, 55वीं जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर पति और पत्नी राजन रघु और शांता रघु लालू एक दूजे के लिए दिल जान से प्यार और मोहब्बत के साथ ये गाना को फरमाइश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज एतवार रविवार 3 तारीख में 55वां फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर पति और पत्नी राजन रघु और शांता रघु लालू एक दूजे के लिए दिल जान से प्यार और मोहब्बत के साथ ये गाना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में 55वां फरियारदाग है। इसी खुशी के मौके पर राधा छेदी अतिबल और अनिल छेदी की तरफ से अपने प्यारी प्यारी समधिनिया की 55वां फरियारदाग की खुशी के मौके पर

शांता रघु लालू की 55वीं verjaardag है। इसी खुशी के मौके पर राधा छेदी, अतिबाला और अनिल छेदी की तरफ से अपने प्यारी प्यारी समधिनिया की जन्मदिन की खुशी के मौके पर 55वीं verjaardag की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। आज रविवार 3 तारीख में रोटरडम शहर की रहने वाली यारह शांता रघु लालू की 55वीं verjaardag है। इसी खुशी के मौके पर 2 पतो शोभा रघु सीताराम और जया रघु जोगी और 1 दामाद रवीश छेदी की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सासू जी के जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस पेश कर रहे हैं।

रोटरडाम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में फैफ टक्स फरियादा है। खुशी के मौके पर दो पतो सुबह रघु सीताराम और जया रघु जोगी और एक दामाद रवीश छेदी अपने प्यारी प्यारी सासू जी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे।

0: और भी फरमाइश बस प्रोग्राम में रोटरडम शहर की रहने वाली यारह शांता रघु लालू की आज रविवार इतवार 3 तारीख में 55वां फरियादा है। इसी खुशी के मौके पर प्रोग्राम में एक स्पेशल और स्पेशल गाना, एक स्पेशल सॉन्ग प्रोग्राम में पेश होगा और पेश किया जा रहा है प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी पत्नी के लिए दिल जान से प्यार और मोहब्बत के साथ। इसलिए कि प्यारा प्यारा पति राजन रघु इसी साल में यार 20 में 60 यार होगा, हाँ 60 यार होगा। तो इसलिए ये गाना आज की प्रोग्राम में स्पेशल और स्पेशल मांग किया है।
1: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
2: क्या क्या क्या?
1: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब

रोटरडाम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में आई फाइव टक्स्ट फरियादा जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी पत्नी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आज रविवार 3 तारीख में रोटरडाम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की 5/5 टक्स्ट फरियादा है। इसी खुशी के मौके पर दो प्यारा प्यारा पोता वियान और विषय रघु के तरफ से अपने प्यारी प्यारी आजी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना पेश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज रविवार 10 तारीख मई 55ste verjaardag है। vandaag zondag 3 mei 55ste verjaardag। इसी खुशी के मौके पर दो प्यारा प्यारा पोता वियान और विषय रघु के तरफ से अपने प्यारी प्यारी आज ही की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और भी फरमाइश बस प्रोग्राम में सुनते ही रहना। रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख मई 55ste verjaardag जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर बड़ी ही खुश होकर प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से अपने प्यारी प्यारी पत्नी की 55ste verjaardag की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना पेश कर रहे हैं।

Rotterdam, shahar ki rehne wali yarah Shanta Raghu Lalu ki aaj rabivar 3 tarikh mein 55th faryardag hai. Isi khushi ke mauke par pyara pyara pati राजन रघु के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी पत्नी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और दिल जान से प्यार मोहब्बत बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। आज रविवार 3 तारीख में रोटरडम शहर की रहने वाली यारह शांता रघु लालू की 55th फरियादा है। इसी खुशी के मौके पर यारह शांता रघु लालू अपने प्यारा प्यारा पति राजन रघु के लिए 3 लड़कन 2 बेटा और 1 बेटी विशाल विनेश और वीरागनी रघु 2 पतो शोभा और जया रघु और 1 दामाद रवेश छेदी और 2 पोता वियन और विषय रघु के लिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे हैं। एक स्पेशल गाना पेश किया जा रहा है जो यारह शांता रघु लालू बहुत पसंद करते हैं, फेवरेट सॉन्ग है और पेश कर रहे हैं अपना पूरा और पूरा परिवार के लिए, इसलिए कि सहौद हेल फिल फनहार और इसलिए आज के प्रोग्राम में ये गाना बस पेश किया जा रहा है। यार शांता रघु लालू अपना पूरा और पूरा परिवार के लिए ये गाना बस पेश कर रहे हैं अपना हर दिन।

रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज रविवार इतवार 3 तारीख में 5 and 5 तख्तों पर यारदाग है। इसी खुशी के मौके पर यारख शांता रघु लालू अपने प्यारा प्यारा पति राजन रघु के लिए 2 बेटा और 1 बेटी विशाल विनेश और वीरागनी रघु के लिए 2 पतो शोभा और जया रघु और 1 दामाद रवीश छेड़ी के लिए और 2 पोता वियान और विषय रघु के लिए ये गाना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। आज रविवार 3 तारीख में रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की 5 and 5 तख्तों पर यारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा पति राजन रघु के तरफ से प्यारी प्यारी पत्नी की 5 and 5 तख्तों पर यारदाग की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और दिल जान से प्यार मोहब्बत पेश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में फैफ फरियादा है। इसी खुशी के मौके पर बड़ी ही खुश होकर प्यारा प्यारा पति राजन रघु अपनी प्यारी प्यारी पत्नी के लिए फैफन फैफ टक्स फरियादा की खुशी के मौके पर प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना को फरमाइश कर रहे थे। देखा जाए प्रोग्राम में एक आखिरी फरमाइश बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आज रविवार 3 तारीख मई फंदाख सोंदाख 3 मई रोटरडम शहर की रहने वाली यारख शांता रघु लालू की फैफन फैफ टक्स फरियादा जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर यारख शांता रघु लालू खुद अपने लिए और अपना पूरा परिवार के लिए अपना मन चाहत गाना बस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं श्रिया जी की आवाज में। खुद अपने लिए और अपना पूरा परिवार के लिए ये खास गाना को पेश कर रहे हैं।

रोटरडम शहर की रहने वाली यारगा शांता रघु लालू की आज रविवार 3 तारीख में 55 फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर यारगा शांता रघु लालू खुद अपने लिए और अपना पूरा परिवार के लिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। इसी तरह से प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश बस पेश की गई यारगा शांता रघु लालू के लिए रेडियो SBS के जरिए। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से जन्मदिन लाख लाख बधाई हो, शुभकामनाएं हो, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। रेडियो SBS के जरिए आपकी फरमाइश पेश की गई, असर उम्मीद है ये सरप्राइज जो आपकी पूरा परिवार की तरफ से पेश की गई है सुनकर और काफी पसंद आया।

रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से और भगवान से यही प्रार्थना किया जा रहा है कि आपकी उम्र 100-100 साल तक बढ़ते ही जाए और हर साल इसी तरह से अपना पूरा परिवार के साथ अपना जन्मदिन को आप मनाते रहे। एक बार फिर से फरमाइश देने सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से आपकी फैफन फैफ तक सफर यादा की खुशी के मौके पर

0: मैं आप सभी सुनने वालों से ज्यादा दौरा किया चाहूंगा। ग्लेन स्टूडियो में आ गए हैं, उनके जरिए तुरंत रेक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फकीर से इंफॉर्मेशन के बाद तुरंत बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश किया जाएगी, तो जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मैं आप सभी सुनने वालों से मिलेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे प्रोग्राम लेकर के। तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

3:13 हो गया है, 13:09 बैठक गाना, बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार ग्लेन, बस सुनते रहना यहाँ से बैठक गाना।

शर्विन तेजू के पास में भी आप सुनते प्रोग्राम से हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।

के नजर लगे राजा तोरे बंगले में। सुनील और साथ में पूजा राम सुंदर के वास में भी आप सुनते हैं लाइव फ्रॉम द सिटी यूट्रेख्ट टेम्स ड्रेव नंबर 237 शहर यूट्रेख्ट के अंदर से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS।

हमीद, हमीद सिव गुलाम के पास में भी आप सूरत दे अबे के जरिए हॉलैंड केंद्र में औसत में ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के जरिए हॉलैंड के अलावा दुनिया के हर एक कोने में लोगों

शिवम राजाराम के पास में अभी आप सुन रहे थे द्रौपदी, द्रौपदी के पास में अलवा जय के फरमाइश इश्तिहार या तो मृत्यु समाचार के लिए यानी कि हर एक काम के लिए आप तार कीजिए, वो भी 24 घंटा लगातार, आज नहीं तो कल जरूर से आपके काम आ सकता है। आप तार कीजिए 032-65-65-60 हर एक इन्फो के लिए, और साथ में स्टूडियो का तार का नंबर 032-62-66-11 आपको दिया जा रहा है।

चार बजकर इस वक्त चार मिनट गुजर रहा है लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो वेस्ट।

0: के तेरी जुल्फो से जुदाई तो नहीं मांगी थी। रविंद्र सिंह सिंहनाथ के वॉयस में भी आप सुनते प्रोग्राम से। और अब की बार सुनते रहे ना एक स्पेशल स्पेशल रिक्वेस्ट।
1: गोरे गोरे काले पे
0: उत्रेख दमेरन से श्याम श्याम ठाकुर दत्त की तरफ से अपना पत्नी के लिए स्पेशली नंबर पेश किया जा रहा है।

0: आनंद भजन और साथियों के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से के गोरे गोरे गालों पे काला गोदनवा जुलुम करे। यूट्रेख्त मेरन से श्याम श्याम ठाकुर दत्त के तरफ से अपना पत्नी के लिए नंबर पेश की गई है। और अब की बात सुनते रहना रविंदर भोला सिंह के आवाज में।
1: बहुत है भारी
0: के भौजी के अंगना है बहुत भारी।

0: रविंदर भोला सिंह के पास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से
1: निभाना पड़ेगा
0: और की बात
1: निभाना पड़ेगा।
0: रकेश रकेश यान करण के पास में निभाना पड़ेगा। निभाइन से रेक रेक जिन्नो का पसंद सुनते रहना।

दविंद्र सिंह शिवनाथ के बाद में सुनते रहना के ना रैन कते ना चैन कते। देन बॉस से नीता महावीर की पसंद सुनते रहना।

ना राइन कथे ना चाइन कथे, देन बॉस से नीता महावीर की पसंद अभी आप सुनते प्रोग्राम से लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक

0: रजेश शिव नंदन के पास में सुनते रहना एजलस्टाइन, एजलस्टाइन से
1: दिल ना लगे दिलदार,
0: रामन ज्वाला प्रसाद का पसंद सुनते रहना।

दिल न लगे दिलदार। जयसी नंदन के वास में भी आप सुनते ऐसे से रामन ज्वाला प्रसाद का पसंद।

0: रमेश चंद्र बिहारी की आवाज में अभी आप सुनते और आपकी बार सुनते रहना रविंद्र भोला सिंह के आवाज में
1: बार बार बोले।
0: वीन राम शरण का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

के सजन तनी आ जाइयो ना। सुजल उमराव के पास में भी आप सुनते प्रोग्राम से इमेजल 6:05 5:00 इस वक्त 6 मिनट गुजर रहा है। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन द वन एंड ओनली रेडियो SBS

0: अरहर के दाल या तो उर्दी के दाल।
1: उर्दी के दाल देखो मटर के दाल पकावत हमार
0: बुढ़िया। इतरे लाइट सराइन से रजे जुदीत का पसंद सुनते रहना।

कि अब न हो ये जवान। अर्जुन अवतार के पास में भी आप सुनते हैं। और अब की बात रामचंद्र बंसीधर के पास में

हर शिव बालक के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से इतरक से उषा रामबली की पसंद अभी आप सुन रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता आज की बैठक गाना प्रोग्राम समाप्त होने पर आते हैं।

श्याम बंधु के पास में भी आप सुन रहे थे। विज्ञानवती चैतु के पास में सुनते रहना।

समाप्त होने पर आया। आज की बैठक गाना प्रोग्राम यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल न्यूज फरके से फमासी और उसके बाद में आज आंजलि के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आप ही का खिदमतगुजार ग्लेन। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

0: सांस सा देखो मेरा रुकने लगा,
1: देखा जो हसीना किसी ने पे पसीना, तो पसीना तेरा भी देखो छूटने लगा।

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरि हरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिल विल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

देखो दिन ये न ढलने जाए. दित प्रातः लीजिए इस गजंग दोर आशा भोसले एंक वाम आयो दे फिल्म भावना. आयो दे फिल्म हाल्फ गर्लफ्रेंड इस फॉल्ट लीजिए फिया रेडियो SBS गजंग दोर श्रद्धा कपूर. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी.

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है। धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आए द फिल्म जॉगर स्पार्क। Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pony Pandey komt Lela met Lela.

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार शानू की आवाज में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे। मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों में।

ऐ दिल इतना बता दे, बेहतरीन गाना आपने सुना हरे हरन की आवाज़ में फिल्म दीवाने से। अगला गाना प्रोग्राम की तुम के लहर में है रूही से, सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में आप सुनिए भूतनी।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आ जमा हिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जी ने करदा।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.